हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Babat filhal tasdeeq nahi kar sakte Geneva mein team ki shirkat schedule mutabiq tay hai.
6: अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फौज विच ओभर में कुझु वक़्त लाइ मौजूद रहंदी। आतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहं जी डेड लाइन मुश्किल न आहे। ईरान सुठो 300 अरब फंड ॾींदासीं। जंग जारी रखो हा त ख़तरनाक इक़्तिसादी नतीजा साम्हूं अचनि हा। जॾहिं बि अमन जी ॻाल्हि कयूं था, स्टॉक मार्केट रॉकेट जीअं मथे अचे थो। ईरान जा मुंजम थियल पैसा वक़्त अचण ते वापसि कंदासीं। ईरान मुस्बत रवैयो अख़्तियार कयो त पाबंदनि में बि नरमी थी सघे थी। अमरीकी सदर ट्रंप जी फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस सदस्य चवणो हो त ईरान में स्कूल ते हमले बाबति जांच जारी आहे। लेबनान मामले ते नेतन्याहू सां इख़्तिलाफ़ आहिनि। इसराइल खे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे पर बेरू

सुठो न आहे। ईरान सां मुआदो न कयो हा त अब्राहिम हुर्मुस न खुले हा। ईरान में रिजीम चेंज थी चुकी आहे ऐं हाणे उते स्मार्ट क़यादत आहे। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण ते बि राज़ी थी वियो आहे। ॿिनि महीननि अंदरि मुआदे ते अमल न थियो त ईरान ते ॿीहर बमबारी शुरू कंदासीं। ईरान सां मुआदे में पाकिस्तान ऐं क़तर जूं सफ़ारती कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि।

0: ara proper a Portes.
1: सिंध में 50 करोड़ रुपयन का वधीक ज़रे आमदनी ते 8 सैकड़ो सुपर टैक्स लागू प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2 सैकड़ो इंश्योरेंस टैक्स लागू वधीक सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो री इंश्योरेंस सर्विस अडावती सर्विस इंश्योरेंस एजेंट्स ऐं ब्रोकर्स ते टैक्स लागू लीगल सर्विस टैक्स कंसल्टेंट्स रिपेयर सर्विस ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विस टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि।
0: सिंध जे बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। अमन अमान जेलनि ऐं पॉलिसिंग लाइ 216 ॾहाई 537 अरब। कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि लाइ 27 ॾहाई 565 अरब। ज़रात लाइ 38 ॾहाई 22 अरब। लाइव स्टॉक ऐं फिशरी 6 अरब रुपया रखिया विया। आपाशी शोबे लाइ 41 ॾहाई 1 अरब। मकानी खाते लाइ 201 ॾहाई 39 अरब। इतलात खाते लाइ 10 ॾहाई 806। स्कूल प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446 ॾहाई 958 अरब रुपया मुख़्तस। कॉलेज एजुकेशन लाइ 41 ॾहाई अरब। यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स लाइ 9 ॾहाई 417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8 ॾहाई 18 अरब रखिया विया।
1: सिंध हुकूमत माली साल 2027-26 जी बजट में मुख़्तलिफ़ खातनि में 8499 नौकरियूं पैदा करण लाइ 16,73 करोड़ रुपया रखी छॾिया। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 7635 नयूं नौकरियूं पैदा कयूं वयूं आहिनि। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2, नाणे खाते में 18 आसामी भरी विधियूं। रताब खाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गरू खाते, जलन वारे खाते ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ खातनि में बि नयूं नौकरियूं पैदा कयूं वेंदियूं।
0: NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ 14 अरब, TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़, AIDS कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़, PPHI लाइ 24 अरब, API प्रोग्राम लाइ 24 अरब, 8 अरब, किडनी सेंटर कराची लाइ 30 करोड़, सुलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़, प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बेरिया टाउन लाइ 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3 अरब 50 करोड़, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रुपया रखण जी तजवीज़।
1: सिंध जी बजट में सूबाई राजधानी कराची जी तरक़ियाती बजट लाइ वॾी रक़म मुख़्तस। मजमूई तौर ते शहर जे 816 मनसूबनि लाइ 664 ॾहाई 3 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 110 मेगा मनसूबनि लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। 167 जारी मनसूबनि लाइ 500 मिलियन मुख़्तस। एयरपोर्ट खां स्टार गेट ताईं नओ फ्लाई ओवर ठहंदो। बलीराड खां शाहराह फैसल ताईं राइट टर्न अंडर पास जो मनसूबो बि बजट में शामिल। रेल लाइन BRT लाइ 13.2 अरब ऐं येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख़्तस। गुजर नाले स्ट्रोम वाटर ड्रेन ऐं सर्विस रोडनि लाइ 80 रुपया जा मनसूबा। लियारी ट्रांसमिशन पैकेज लाइ 4.37 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन ऐं सॉल्ट वेस्ट मनसूबनि लाइ बि रक़म रखी वई। K4 पाणी मनसूबा निज़ाम

कोई ओपोनेंट नहीं हूँ। और फिर अमानतदार, अमानतदार से मुराद क्या है कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे सपुर्द किया है वो सब पहुंचाना चाहता हूँ, छुपाऊंगा नहीं उसको, यानी अपने काम में पूरी कमिटमेंट। अमानतदार का लफ्ज क्या माने रखता है? कमिटेड। खयानत दरअसल क्या होती है? खयानत इसी चीज का नाम है ना कि आप बज़ाहिर खैर खाही का दावा करें और जब दूसरे के साथ मामला करें तो उस काम को पूरा ना करें जो आप पे डाला गया है, उस जिम्मेदारी को ना निभाएं। कोई शख्स तबलीग का काम नहीं कर सकता जब तक कि वो अमानतदार ना हो, जो जिम्मेदारी उस पे डाली गई है उसको पूरा करने वाला हो। सिर्फ पैसों की नहीं होती कि पैसों के मामले में आप फ्रॉड करें या धोखा दें, वो तो है ही, लेकिन खयानत ये भी है कि जो जिम्मेदारी डाली जाए उसको पूरा ना किया जाए। वक्त में कोताही करना, काम में कोताही करना, टाल मटोल करना। अब एक शख्स पैगंबर का टाइटल तो पाए और जिम्मेदारी निभाने की बजाय घर में सोया रहे, तो इस तरह से तबलीग का काम नहीं हो सकता, उसको फिर कुर्बानी देनी पड़ती। आप देखें कि दुनिया के किसी भी काम के लिए कैसी कैसी कमिटमेंट चाहिए होती। जो लोग भी कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ा क्या, आम दुनिया के कामों में, तो आप देखें कि कितने लॉन्ग आवर्स के लिए ड्यूटीज देते हैं। लेकिन जो ही दीन का काम आ जाता है, हम सब ये सोचते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये काम खुद ही होगा, ये उसका काम है, खुद ही हो जाएगा। दुनिया के कामों के लिए रात रात भर जागते हैं हम, और दीन के काम खुद हो जाएंगे। खुद भला कौन सा काम होता है? अल्लाह ताला फरमाते ना कि अगर ये सब करना होता तो हम खुद कर लेते, लेकिन हमारे लिए आजमाइश है ना, हमारा इम्तिहान है कि हम कितनी कमिटमेंट निभाते हैं। तो नासिहुन अमीन, पैगंबर जब तक अमीन ना हो पैगंबरी का हक नहीं दे सकता। मुबल्लिग जब तक अमीन ना हो, और ये सिर्फ मुबल्लिग और पैगंबरी की खसूसियात नहीं, जो भी जन्नत कमाने के दावे करता हो और जन्नत में जाने की तमन्नाएं रखता हो, उन सब को ये कुछ करना पड़ेगा। आप देखें कि एक काम वो होता है कोई आपके आप करते रहे और जब कोई पीछा छोड़े आप अपनी जगह से भाग निकले, टालमटोल शुरू कर दें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अल्लाह के लिए है, उससे एक अहद किया है, सबसे बड़ी कमिटमेंट उसके साथ है, तो जब तक इस तरह कमिटमेंट ना आए ये मैसेज आगे नहीं फैल सकता। हम बहुत जिक्र करते हैं मिशनरीज का कि इतने मुल्कों में उनका पैगाम फैल रहा है, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी देखा रहा पूरी पूरी जिंदगी अपने अपने घर छोड़कर, आरामदेह इलाके छोड़कर, मालूम नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। न सिर्फ ये कि मर्द बल्कि औरतें भी। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक लोग न बदलें। अगर हम वाकई इस्लाम के खैरखा हैं तो हम में से हर एक को काम करना पड़ेगा, हर एक को। सिर्फ चंद लोगों की बातों से, चंद लोगों के काम करने से काम नहीं होगा, सबको शरीक होना पड़ेगा। ये सोच कर कि ये हम सब का कॉज है, ये हम सब की पहचान है। मुसलमान हर चीज का खैरखा होता है, खा वो उसकी अपनी हो या ना हो। इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, और ये दोनों सिफात बाहम बहुत मिली हुई हैं, खैरखाही और अमानतदारी। अमानतदार वही हो सकता है जो खैरखा हो, और खैरखाही का हक वही दे सकता है जिसके अंदर अमानत हो। अवा अजिब तुम, क्या तुमको ताज्जुब हुआ? अंजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक जिक्र आ गया, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? रब की तरफ से एक नसीहत आई, हैरानी की क्या बात है? अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम, तुम्हारी अपनी कौम के एक शख्स के जरिए ताकि वो तुमको खबरदार करे। हैरानी उनकी किस बात पर थी कि एक इंसान कैसे रसूल हो सकता है? यानी सिर्फ नसीहत के आने पे हैरानी नहीं थी, इंसान के नबी बनने पे हैरानी थी। असल मफहूम यह है आयत का। वज़कुरु इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि कौम नूह, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन का जानशीन बनाया। वज़ादकुम फिल खल्क बस्ततन, और तुम्हें साख्त में फराखी दी। तारीख में आता है कि इनके कद 12-12 फुट के थे। ज़ादकुम फिल खल्क बस्ततन, तुम्हें तुम्हारी साख्त में, तखलीक में बहुत वुस्सत दी, यानी बहुत लंबे चौड़े बनाया तुमको, जिस्मानी एतबार से बहुत ताकतवर बनाया तुमको। ये इस कौम की खास नेमत थी, खसूसियत थी, जिसका उनके साथ जिक्र किया जा रहा है। फज़कुरु आला अल्लाह, याद रखो अल्लाह की नेमतों को। आला, इसका माना नेमत भी है,

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो
2: इट्स 10 एएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
5: किरदार अहम साबित थियो

अमरीका ईरान सां मफ़ामती यादाशनामे जा 14 नुक़्ता जारी करे छॾिया। अबन हुरमत जी बहाली, ईरान ते लॻल माली पाबंदियुनि में नरमी ऐं एटमी प्रोग्राम बाबति ॻाल्हियूं, लबनान ते समूरनि महाज़नि ते हमला बंदि थियण मफ़ामती यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल, अमरीका ऐं ईरान जो हिक ॿिए ते हमला रोकण जो बि अज़म यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल, ॿिए मुल्क ख़ुदमुख़्तियारी इलाक़ई सलामती जो एहतराम कंदा ऐं अंदरूनी मामलनि में मुदाख़िल न कंदा। ॿिए मुल्क 60 ॾींहं अंदर हिकु आख़िरी मुआदे ते पहुचण लाइ ॻाल्हियूं कनि। अमरीका फौरी तौर ते ईरान खिलाफ़ पहिरीं नाकाबंदी हटाइण शुरू कंदो, इहो अमल महीने में मुकमल कंदो। जहाज़नि ते अचवञ जंग खां पहिरियां वारी शकल में बहाल कई वेंदी। आत्मी मुआदे जे 30 ॾींहनि अंदर अमरीका पंहिंजी फौजी ईरानी हंधनि मां हटाईंदो। सिंध जे नए माली साल लाइ 3562 अरब रूपियनि जी बजट पेश, 36 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़िमनि जी पघारनि ऐं पेंशन में 7-7 सैकड़ो वाध जो ऐलान, पहरतनि जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां 43,000 रूपिया कयो वियो। 2,75,000 खानदान खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम मुतारिफ़, सालानी तरक़ियाती बजट में कटौती, तरक़ियाती बजट 1,018 अरब रूपिया मां घटाए 980 अरब मुख़्तस करण कई वई। वफ़ाक़ सां तय थियल मुआदे ते तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रूपियनि मां घटाए 400 अरब कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रूपियनि जी वाधि, बोड़ मुतासिर घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ 5.2 अरब, पुठिते पियल तबिके जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ 13.3 अरब रखण जी तजवीज़, बेनज़ीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब, सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ऐं पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रूपिया मुख़्तस। सिंध में 50 करोड़ रूपियनि खां वधीक ज़रिए आमदनी ते 8% सुपर टैक्स लागू, प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रूपिया, इंश्योरेंस एजेंट्स ते 200% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। री इंश्योरेंस सर्विसिस, अदावती सर्विसिस, इंश्योरेंस लीगल सर्विसिस टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विसिस टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि। सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रूपिया रखण जी तजवीज़, अमनामान जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.537 अरब, कानून ऐं पार्लियामेंटी मामलनि लाइ 27.550 अरब, ज़रात लाइ 38.22 अरब, लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज लाइ 11.6 अरब रखिया विया। आपाशी शोबे लाइ 41.1 अरब, मकानी खाते लाइ 201.39 अरब, इतलात खाते लाइ 7.856 अरब, स्कूल एजुकेशन जे प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.958 अरब रूपिया मुख़्तस, कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.214 अरब, यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड लाइ 9.417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.18 अरब रखिया विया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: ॾाढो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. GFM की आवाज.
3: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Kandasin Iran masbat ravaiyo akhtiyar kiya to pabandan mein narmi thi sake thi. Amerikki sadar Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चवण हो तो ईरान में स्कूल ते हमले ते बाबत जांच जारी आहे। लबनान मामले ते नेतन्याहू सां इख़्तिलाफ़ आहिन। इसराइल के दिफा जो हक़ हासिल आहे पर बेरूत जो इमारतूं तबाह करण ठीक न आहे। ईरान सां वायदो न कयो आहे त अब न हुरमज़ न खुले हा। ईरान में रजीम चेंज थी चुकी आहे, हाणे उते इस्तेमाल क़यादत आहे।

ट्रैफिक असूलनि जी भञकड़ी ते बस मालिकनि ख़िलाफ़ ब्रेक डाउन खां अॻु इंतिज़ामिया ऐं ट्रांसपोर्टर्स में ॻाल्हियूं नाकाम। ट्रांसपोर्ट पारां अॼु खां हड़ताल शुरू। कराची ट्रांसपोर्ट इतिहाद चवण आहे त ट्रैफिक पुलिस सां ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं। अॼु खां हड़ताल कई वई आहे। केतिरनि ई बसनि ते घरा चालान कया विया आहिनि। चालान जी अदायगी लाइ पुलिस ऐं 1 जुलाई खां ब्रेक डाउन शुरू कंदी। फैज़गंज भरिसां बिजली जो थंभो किरण सबबि बारड़ी फोर्थ गोठ जान मोहम्मन में ट्रक बिजली तारुनि में फासण सबबि थंभो घर में रांदि खेॾंदड़ ॿिनि मासूम भेनरुनि मथां किरी पियो। हादसे सबबि अनम शीनू फोर्थ, महक शीनू ज़ख़्मी।

ऐं खिपरू वेझो नाफ़रमान पुट कुहाड़ियुनि जा वार करे पीउ खे क़तल करे छॾियो। गोटला रखियो बोज़दार में। नाफ़रमान पुट ज़हूर पंहिंजे पीउ अहमद बख़्श बोज़दार

सोनी मामलनि में मुदाखिलत न कंदा। ये मुल्क 60 ॾींहनि अंदर हिकु आख़िरी मुआदे ते पहुचण लाइ ॻाल्हियूं कंदा। मुआदे ते सही थी वञण खां पोइ अमरीका फौरी तौर ते ईरान ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी हटाइण शुरू कंदो। इहो अमल महीने में मुकमल कंदो। जहाज़नि ते अजवन जंग खां पहिरें वारी शकल में बहाल कई वेंदी। हतमी मुआदे जे 3 ॾींहनि अंदर अमरीका पंहिंजी फौजी ईरानी हदनि मां हटाईंदो।

ट्रैफिक असूलन की भनगड़ी से बस मालिकों खिलाफ ब्रेकडाउन का अग इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स में गालियों नाकाम। ट्रांसपोर्ट पारा अज का हड़ताल शुरू। कराची ट्रांसपोर्ट इतिहाद चवण है ट्रैफिक पुलिस से गालियों कामयाब न थियं। अज का हड़ताल कई वही है। केतरन ही बसों से गारा चालान क्या वह चालान की अदायगी पुलिस ए 1 जुलाई का ब्रेकडाउन शुरू कंदी। फैजगंज भरसा बिजली थंभो किरण सब बारड़ी फोर्थ गोठ जान मोहम्मद में ट्रक बिजली तार में फासन सब थंभो घर में रांद खेल बिन मासूम भेनर मथा किरी पाया। हादसे सब अनम शीनू फोत महक शीनू जख्मी।

ऐं खेपरो वेझो नाफ़रमान पुट कुहाड़ियुनि जा वार करे पीउ खे क़तल करे छॾियो। गोटला रखियो बोज़दार में। नाफ़रमान पुट ज़हूर पंहिंजे पीउ अहमद बख़्श बोज़दार

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

टीएज और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। यू कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सर कूल और एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत हिस्सा जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तरह लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर लेट देन नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफल के लिए खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल के लिए खुदा खैरियत है मतलू। लोग जिन लोगों की तबीयत खराब है उनको कहेंगे कैच वेल सून। और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको कहेंगे विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में हमेशा हमेशा कामयाब होते रहें। जी आमीन।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़,
3: GFM 91.6।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। ट्यून इन कर सकते हैं जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है वहाँ वहाँ तक। अच्छा, इसके साथ साथ जी हम कॉल्स भी लेते हैं। कॉल मुझे बहुत सारी रिसीव होती जा रही है आप लोगों की। फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे हम कॉलर कहाँ से हमारे से। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: अजीज
0: सोलंगी भाई, कैसे? ठीक ठाक,
2: अल्लाह का करम लगाते हैं। आप बताइए बाजी, सर खुश है सर?
0: जी खुश और खैर भी। और मुझे बताइएगा कि कोई मनकपट, कोई नात, कोई कसीदा सुना रहे हैं आप हमें?
2: जी जी, आओ नात तो बताइएगा।
0: ओके जी, सुनाइए।
2: बाकी दुनिया बेपता, तोबा जिंदारी मुँह तक गई खता, तुम
0: ओके जी। और कुछ कहेंगे
2: बाजी? ये जमील खंडरे जो आवाज है,
0: ठीक है, मैं सर्च करती हूँ। और टाइटल क्या है इस नात का?
2: जमील गंदरो है, नात के कहे तो जमील गंदरो।
0: ठीक है जी, जमील भंबरो को हम सर्च करते हैं। और
2: नहीं नहीं बाजी, भंबरो नहीं, गंदरो।
0: चलिए जी, मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ और सर्च करके देखते हैं। और कुछ कहेंगे?
2: बस सदनी बुधवार के मुझे थोड़ा सारा सलाम है मारम जो अध्याड़ा लल का खुशी के करे अदब इकराम सा गुजारी।
0: ओके,
2: मेहरबान भाई,
0: थैंक यू। 03000113488। नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: बाजी सखर सलाम।
0: सखर से कौन? ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो
4: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
4: वालेकुम अस्सलाम, SRH रोड़ी से।
0: SRH रोड़ी से कैसे, ठीक ठाक हैं आप?
4: बिल्कुल खैरियत से।
0: अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या सुना रहे हैं आप हमें?
4: नात
0: नात सुना रहे हैं, सुना दें।
4: शाहे मदीना, शाहे मदीना, यशरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली।
0: ओके जी, और कुछ कहेंगे?
4: बस प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है,
0: थैंक यू।
4: ठीक है, ओके, अल्लाह
0: हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज नात हम प्ले करते हैं जी SRH की, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे।

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था, जिते हुजे तहफुज, जदीद सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
0: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
3: सखर शिकारपुर रोड ते,
0: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू,
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
0: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो।
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
0: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा,
3: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
0: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलियतूं,
3: साफ मिठो पाणी,
0: बिजली, गैस,
3: 24 कलाक सिक्योरिटी,
0: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे,
3: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
0: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
3: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
0: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
0: एंड 03132757860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
3: तमाम से महफूज मुस्तकबिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब। खुशखबरी, खुशखबरी अवां जे बारनि जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तकबिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मनियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग ऐं फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाइ दाख़िलाउनि जो शानदार ऐलान। हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM ऐं 5 साल DPD, जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW ऐं CMA ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूदु आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुल फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूदु आहे। स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156356 42 03008311207। सखर के मिजाज में घुली मीठी खजूरों की चाशनी,
0: सुनते रहिए GFM 88 सखर की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: It's 12 PM. This transact is brought to you by
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे जी एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: पहाड़ी खोत गोड़ जान मोहम्मद में ट्रक बिजली तार में फाथन सब थंबो कर में रान थड़ बिन मासूम भेनर मथा किरी पयो हादसे सबब अनम शीनो फोत मेक शीनो जख्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: DAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज ना।
2: यहाँ जो कायम तहकीकी इदारे हैं वो समंदरी माहौलियात के हवाले से, आबी हयात के हवाले से, और जो डीप सी टेक्नोलॉजी होती है और डीप सी जो रिसोर्सेज हैं उन पर तहकीक करते हैं ताकि इस हवाले से भी मजबूत जो है वो बुनियाद हासिल की जा सके। इम्पॉर्टेंट चीज जो आम आदमी के सुनने की होगी, वैसे तो बहुत कुछ था इस टेक्नोलॉजी सेंटर में, लेकिन जो हमने देखा वो ये कि ये बताया गया कि चूंकि चीन ऐसा मुल्क नहीं था जहां हर तरह के बीज दस्तयाब हों, और मैं ये ज़राअत के हवाले से बात कर रहा हूं, ज़राअत में कुछ फसलें ऐसी थीं जो चीन के पास नहीं थीं, कुछ फल ऐसे थे जो चीन के पास नहीं थे। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी सेंटर ने ये किया कि वहां से जो सीड इंपोर्ट किए गए बाहर से उन पर रिसर्च हुई, और उनकी रिसर्च के साथ साथ कि वो कैसे इस मिट्टी यानी चीन की मिट्टी के साथ कंबाइन होकर एक बेहतर फसल दे सकते हैं उस पर काम किया गया, और फिर साथ ही जो बीज मंगवाए गए उसका दूसरा मकसद ये था कि हम आइंदा बीज नहीं मंगवाएंगे बल्कि हम चीन में खुद ये बीज बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि जिस पर हम सब बड़े हैरान हुए, और फिर हमें बताया गया कि कई तरह की फसलों और फलों के ऐसे बीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज से भी मंगवाए गए और फिर उनको यहां खुद पैदा किया गया। तो ये इस वक्त चीन में बीज की तहकीक के हवाले से और चीन में बीज को बनाने के हवाले से ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। सुनने वालों को हम ये भी बताएं कि चाइना में एक चीज बड़ी मशहूर है और वो यहां का सीड बैंक, और वो सीड बैंक ये कहलाता है कि आप दुनिया भर से जितने भी बीज मंगवा रहे हैं उन बीजों का यहां होना जरूरी है। वो एक जैसे हम नॉर्मल बैंक हमारा करेंसी बैंक होता है, ऐसे ही सीड बैंक है, और उसकी खासियत यह है कि वो सिर्फ इन बीजों को ये कहना चाहिए कि महफूज नहीं करता, बल्कि जो हम कहते हैं कि जो फसल को मिलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है दो बीजों को, उसके सिलसिले में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। मुल्क भर से यहां साइंसदान जमा किए जाते हैं, एक खास सीजन होता है तब तक वो किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, फिर प्रॉपर ट्रेंड फार्मर्स को बुलाया जाता है अगस्त सितंबर में, और फिर वो उन बीजों को लगाते हैं, और उसके बाद जो चीज सामने आती है फसल जो उगती है फिर रिसर्चर्स को बुलाया जाता है कि अब आकर देखें कि ये जो फसल हमने उगाई है इसमें प्रोटीन, इसमें दीगर चीजें, गजाई जरूरियात कितनी अच्छी है, और क्या वो लोगों के इस्तेमाल के लिए है या लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। फिर साथ ही इस मंसूबे में खलाई टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और खास तौर पर इस वक्त तो हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हम सोचें तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पाकिस्तान का खलाई शोबे में चीन के साथ है। हाल ही में दो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको पाकिस्तान से बुलाया गया है, वो यहां तरबियत हासिल कर रहे हैं। अब वो दो एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट चीन के खलाई जहाज के साथ खलाई मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जाएगा भी, और वो चीन के किसी खलाई प्रोग्राम में पहला शख्स होगा, पहला गैर मुल्की होगा, और वो पाकिस्तान को एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तानी होगा। और दूसरा जो फर्द तरबियत के लिए यहां मौजूद है वो यहां जो उनका साइंस सेंटर है ग्राउंड पे वहां मौजूद रहेगा। तो साइंस के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज को जिक्र करने का मकसद ये था आज के पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई तरह के काम हो रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से, और जो गजाई जरूरियात हैं चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा अफराद की चीन में हो या पाकिस्तान में हम 25-26 जो भी ऑफिशियल नंबर्स हैं करोड़ की अगर हम बात करें जो आबादी है हमारी उसके हवाले से अगर हम बात करें तो गजाई जरूरियात होना बहुत जरूरी है। और ये इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के जदीद मराकज ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं कि आप कैसे मुस्तकबिल की पेशबंदी कर सकते हैं। हम गंदम उगाते हैं लेकिन वो गंदम फिर हम एक्सपोर्ट करने के बाद वापस इम्पोर्ट कर रहे होते हैं अगर कमी हो जाती है। चावलों का भी यही हाल है, दीगर फसलों का भी यही हाल है, तो इवन चीनी का भी, गन्ने का भी। तो फिर ये जो सेंटर्स हैं बेसिकली ये आपको तैयार करते हैं कि आप कैसे रिसर्च के साथ अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो आप कैसे इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर इतना बढ़ाने के बाद कि उसमें क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान में भी इस तरह के सेंटर्स की काम करने की। और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आती है वो हर शोबे में है, वो एग्रीकल्चर में भी है, समंदरी जो आबी तहकीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी है और खलाई तहकीक में भी है, वो ये कि किसी भी रिसर्च को इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ते तो फिर मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होगी।
3: ओके जी, एहतिसाम आप मुझे सुन सकते हैं?
2: जी जी मैं सुन रहा हूँ।
3: ओके जी, तो मजीद इस बारे में आप हमें और क्या बताएंगे?
2: बस एक एक चीज जो कि मैंने नुक्ता बुनियादी छोड़ा आखिर में, मेरा ख्याल है इस पर हम थोड़ी बात और करेंगे, और वो ये कि पाकिस्तान में जो रिसर्चेस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में, अभी कुछ गुज़श्ता दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और वहाँ एक सेशन था जिसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स थे और जो एमफिल के स्कॉलर्स थे उनको टीचर्स बता रहे थे कि आपने दाखिला ले लिया है, आपका पहला साल गुजर चुका है, तो अब आपने करना क्या है आगे जाकर, आप जो सोच कर आए हैं पाकिस्तान से कि मैंने ये करना है वो करें, या आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट क्या है, चीन की मार्केट क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज उन्होंने ये बताई हमें कि अब आपने जो कुछ भी प्लान करना है 2026 में खड़े होकर चीन में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप चीन में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने लिए देखें या यहां से नई चीजें सीखकर जाएं, तो चीन में अगले 5 साल के लिए जो कुछ अनाउंस हो चुका है कि हमने बिजली कैसे पैदा करनी है, हमने ज़राअत को कहाँ लेकर जाना है, वो एक पूरा एक, एक, एक प्लान होता है 5 ईयर्स प्लान। तो उस प्लान के मुताबिक अब आप ये देखें कि आपकी जरूरत कहाँ तक है और आप किन चीजों में आगे जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये करें जो कुछ आप सोच के आए थे कि मैं ये पढ़ूंगा, अब आप वही पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज जो वहां समझ में आई वो ये थी कि इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, एकेडेमिया के लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद थे, और वो ये प्लान कर रहे थे कि आइंदा आने वाले सालों में जो रिसर्च होनी है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं और ये चाहें कि आप मार्केट में शामिल हो जाएं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, बल्कि आपने इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशंस देने हैं, आपने उन तमाम मुश्किलात का हल निकालना है जो इस वक्त इंडस्ट्री को दरपेश है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ता है। तो बेसिकली एक कंबाइंड एफर्ट हमें नजर आ रही है, और वो कंबाइंड एफर्ट ये है कि जो रिसर्चर हैं वो अपनी रिसर्चेस को इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम साथ ऑर्गेनाइज करें, के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि उनको ये मालूम हो कि जब मैं कोई आइडिया दूंगा इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, मेरे लिए जॉब ऑपर्चुनिटी है और बजाय इसके कि मैं रिसर्च कर लूं और फिर सोचूं कि मेरे पास ये आइडिया है अब इस पर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच है। पाकिस्तान में सोशल साइंसिस का भी हाल हमारे सामने है कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं जिनका सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, और वो रिसर्च पराए नाम रिसर्च है, लेकिन अगर मुल्क में तरक्की करनी है, हमारे मुल्क में तरक्की करनी है और आगे जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज से पूछें कि आपको क्या मसाइल हैं अगले 5 सालों में, और उन मसाइल को सॉर्ट आउट करके देख के उसको एक जगह रखकर फिर यूनिवर्सिटीज को ये प्रपोजल दें कि ये सेक्टर्स हैं जिनमें हमें काम करना है, आगे जाना है, इसके लिए आप लोग तैयार करें जिनकी रिसर्च इसमें हो, फिर अगले 3-4 सालों में वो लोग तैयार हों, जैसे 5 साल मुकम्मल हों तो वो उस इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए तैयार हों और वहां की जो मुश्किलात हैं उनको खत्म करने के लिए तैयार हों। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी मॉडल पर दुनिया भर में काम हो रहा है, चाहे वो आप अमेरिका की बात करते हैं, चाहे आप चाइना की बात करते हैं या दीगर ममालिक की बात करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपने लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आपने तहकीक करनी है, तो इंडस्ट्री को साथ लेकर चल रहे हैं। پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ہے، صنعتی کے علاوہ جو ہمارا زراعت کا شعبہ ہے اس میں بہت لوگ انوالو ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیسے ایک زمین پر ایک سال میں دو سے تین بار فصل اگا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ریسرچ ہونی چاہیے، کون سی فصل ایسی ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، اس کے لیے ریسرچ ہونی چاہیے، ہمارے پاس اگلے پانچ دس سال کا پلان ہو کہ ہم نے اب کپاس امپورٹ کرنی ہے زیادہ جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے، ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم نے گنا ایکسپورٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں، رائس ایکسپورٹ کرنا ہے، خاص طور پر پاکستان کے پھل دنیا بھر میں مشہور ہیں وہ ایکسپورٹ کرنا ہے، اور پھر کچھ سیکٹرز کو مارک کر کے اس کے بعد اس پر کام کیا جائے اور اس پر بات کیا جائے کہ ہم کیسے اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو.
3: اوکے جی، اور لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے احتسام؟
2: بس جناب کوئی پیغام کیا دینا ہے، بس یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کریں، اپنی پوری فوکس کے ساتھ کریں. ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ وقت ہے نکل جائے گا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، اس کو دیانتداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اگر کریں تو وہی آپ کا جو وقت ہے وہ مزید اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے کام نکل رہا ہے بس چلنے دو، تو پھر چلنے دو میں پھر ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگا.
3: Obviously, exactly. Thank you so much. احتسام آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ، بہت سارا خیال رکھیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان، جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. تو آج کا سیگمنٹ ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے جی. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک اسی سیگمنٹ میں دوبارہ ایک اور گیسٹ کے ساتھ ہماری چٹ چیٹ ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف بھی جاتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: खूबसूरत सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे खुद ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुन।

0: प्रभात मटियारी FM 91.6 सिंध उदंदा रहो।
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
2: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
2: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
1: रब्ते के लिए
2: 0326 22 00 40।
3: GA FM 88 नेटवर्क।

0: आज की अच्छी बात यह है कि मुहर्रम पाक का महीना है कि लोग ये जो है गाने सुनते हैं, साज वगैरह सुनते हैं और फिल्मा देखते हैं, गंदी गंदी फिल्मा देखते हैं और गंदे गंदे गाने सुनते हैं। देखो कि हजरत इमाम हसन हुसैन ने हमारे दीन की खातिर कुर्बानी की है, ठीक है, वो हमारे दीन की खातिर शहीद हो गए। तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मुहर्रम का एहतराम करो और ये जो गंदे गाने और वीडियो और फिल्में जो है ये फिलहाल 10 तारीख तक बंद कर।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज जी, हाफिज लखमीर। और इनके कहने का मतलब ये था कि मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए जी, और बिल्कुल। तो फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होती है अब शाम को 7 से लेके 8 बजे तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो सुनना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लिप्स ऑन पेपर थिंक हाई, सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
4: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
5: Bankal Habib, Rishta, Bharose.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहरें आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matiari, FM 91.6. सिंधु जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते
5: से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी खत्ते की बनी है आवाज
5: जीए एफएम
0: इट्स 1:15 पीएम
1: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लौट रहे हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती आपको मिलने वाली है। बस ये आप याद रखा करें, अक्सर जो होता है ना प्रोडक्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप लोगों को चीज समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में अगर आप जाते हैं ऐसे दिन जैसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस प्रोडक्ट की तरफ जाना है और जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा वाली बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद भी कहा जाता है। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आप लोगों की मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है देते हैं, तो आज हिसाब से आप लोगों से जो मैंने सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि मुहर्रम का पैगाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सब इंसानों के लिए। आज आप इस सवाल का मुझे जवाब बताने वाले हैं और साथ ही साथ जो है ना अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे वो भी बताते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए जो ये सारे प्रोडक्ट है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा डाउट है कि कहीं पर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके सिटी में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके गोठ में ये प्रोडक्ट व्हाइट एज के नहीं मिल रहे हैं, तो आपने बस इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लेना है और नंबर के ऊपर आप जैसे ही रब्ता करते हैं तो आपको इजीली जो है ना ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो नंबर

03 15 799 0595. ये नंबर आप लाजमी डायल करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं. जल्दी से आप जो हिना प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए ताकि आप भी परचेज कर सकें और आप भी इस्तेमाल कर सकें. ओके, तो इस्तेमाल करने की जाने बातें हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियों के सीजन में भाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मैं भी इस चीज को, इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर आप गर्मियों का सीजन आता है ना, तो हम जैसे हमारी सर्दियों में रूटीन रहती ना, वो गर्मियों में जो ना थोड़ी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो अक्सर जो होता है ना, हमारे चेहरे की स्किन जो है गर्मियों में काफी ज्यादा खराब हो जाती है. ड्राई तो हो ही जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना डलनेस भी काफी ज्यादा आ जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी हो जाता है, और खास करके जो टीनेजर्स लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर भी अगर एक्नी का बहुत ज्यादा मसला है, तो ये जो व्हाइट एज के प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ना, इसमें आप लोगों के लिए हर मसले का हल मौजूद है. अगर आप गर्मियों में ये सोच रहे हैं कि हमने गर्मियों में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट गर्मियों में हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम में लेकर आई हूँ. अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला है. और अब ऐसे यानी कि बहुत से मेरे मासूम से लिसनर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई फेयरनेस क्रीम क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है और नाइट क्रीम में क्या डिफरेंस है. तो आप लोगों को ये चीज बताती चलूं कि जब आप फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है जैसे आप कोई भी मेकअप लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये चीज है कि भाई आप इस लिमिट होगी क्या हम छोटी उम्र में लगा पाएंगे, या ऐसा कोई सी नहीं है. व्हाइट एज है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन टोन के लिए ये तैयार की गई है, क्योंकि ये व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये वाइटामिन से भरपूर, क्योंकि इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल एड किए गए, जिसमें आप लोगों के लिए विटामिन B3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, एंड विटामिन डी भी मौजूद है. और उसके साथ साथ बात यहाँ पर खत्म नहीं होती जनाब, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, और वो इसलिए ताकि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन हो, और आप लोगों को ये जो धूप के असरात है ना, जो कि बड़े बुरे असरात आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझा सी जाती है, तो उससे भी आपकी स्किन की जो है ना वो हिफाजत करता है. तो तरीके इस्तेमाल भी यही है कि आपने सुबह या फिर लगाएं, या फिर रात को लगाएं, या फिर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आप वहां लगा कर जाएं. लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, और फेस वॉश लगाने के लिए जो है ना आपके पास व्हाइट एज प्यूरी सोप या फिर व्हाइट एज का फेस वॉश होना चाहिए. बिल्कुल जी, अगर आप सोप इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूरी सोप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, जो कि

आपको नहीं मिल रहा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो आपको जो नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता करके इजीली जो है ना वो अपने एरिया के अंदर अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से जो है ना आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। आयुर्वेदिक फार्मूला मतलब कि ये नेचुरल अजा से तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों के चेहरे की ना सिर्फ एक्नी को खत्म करता है, बल्कि आपके चेहरे पर अगर एक्नी के निशानात हों या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के बहुत से निशाना जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको छोटी एज में कोई चोट लगी थी जिसका निशान अभी तक आपके चेहरे पर मौजूद है या फिर कोई जलने का निशान है, तो आप वो सारे निशानात को रिमूव कर सकते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये आपके एक्नी से फाइट करता है, बल्कि ये आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है और आपकी स्किन जो है वो साफ और शफाफ हो जाती है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप नाम लेकर परचेज कर सकते हैं, इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस्तेमाल करने के तरीके कार जो है वो बिल्कुल यही है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सोने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, हाथों को भी अच्छे से वॉश कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ जो है ना वो भी क्लीन होनी चाहिए। जब आपके हाथ क्लीन होते हैं, आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हाथों पर अगर ऐसा है कि आपके हाथ ही क्लीन नहीं है, आपने सिर्फ चेहरा धो लिया है, उसके बाद जो है ना आपके हाथ भी क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके जरासीम होती है ना जो आपके फेस तक पहुंचते हैं वो आपके हाथों की मदद से ही पहुंच रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, ख्याल रखेंगे तो आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खूबसूरतियां जो है ना, अब मुझे लगता है कि आपकी खूबसूरती आपके हाथ में है, क्योंकि अब आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आराम से, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं, वहां से नाम लेकर पाते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी सोप है या फिर फेस वॉश है, अगर बहुत से लोग जो कहते हैं असा क्रीम नायू लगाइंदा त तव्हां साबुण ऐं फेस वॉश जेको आहे ट्राई करे सघो था। अगर ये ॿ चीजूं तव्हां ट्राई करे ॾिसंदा त पोइ तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाकई तव्हांखे व्हाइटिश जा प्रोडक्ट इस्तेमाल करणु घुर्जनि। उन खां पोइ अगरि तव्हां स्टेप खणो था त तव्हां व्हाइटिश लवली क्रीम लाज़मी ट्राई करे ॾिसजो, जेका फेयरनेस क्रीम आहे। को टेंशन नाहे त बाबा हिन जा कोई साइड इफेक्ट हूंदा या असांजी उमिरि नाहे, असां क्रीम नथा आणी सघूं, त तव्हांजे लाइ जेको आहे न व्हाइटिश लवली क्रीम जेका उहा सफ़ा गेम चेंजर जो कमु कंदी। तव्हां ट्राई करे ॾिसजो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। सो बिल्कुल जी तव्हां सां सां गॾु मौजूद आहे, प्रोग्राम ॿुधो पिया, शामली प्रोग्राम थियो पिया, पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं तव्हां किथां असांखे ॿुधो पिया, केरु केरु असां सां गॾु मौजूद आहियो, प्रोग्राम जो हिसो थींदा वञो। ऐं मूं अॼु तव्हां खां सवाल पुछियो आहे जंहिंजो तव्हां मूंखे जवाब ॾियो पिया। सवाल कुझु हीअं आहे त मुहरम जो जेको पैगाम आहे सिर्फ़ मुसलमाननि जे लाइ आहे या फिर सॼी इंसानियत जे लाइ?

जी ओके ओके दे सलाम टू ऑल, गुड आफ्टरनून. कसीदा प्ले करें जी. ओके मैं कसीदा आपका लगाती हूँ. आपने लिखा है शो लिसनिंग विथ कदीर देरो एंड हाजी गुलाम नबी मिला. ओके जी, आप सबको खुशामदीद कहा जाता है. और फरमान अली हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद. और ये हैं जी दर्दे दिल, कहती हैं कि कुछ महीने खुशियां लाते हैं और कुछ महीने दिल को सब्र का सबक दे जाते हैं. या अल्लाह हमें हक पर चलने और हर आजमाइश में सब्र की तौफीक अता फरमा, आमीन. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. आपको भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और फहीम कहते हैं कि सबको बता रहे हो उसी कारवां के हो, जिंदा तो लौटते नहीं जंगजू हुसैन के, तुमने इमाम वक्त के बाजू कलम के, अब्बास के बदन पे थे बाजू हुसैन के. ओके जी, पोस्ट को आप लाइक और शेयर करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है ये, आप हमें बताते जा रहे हैं. और साथ साथ मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक आंसर आल इंसानियत के लिए. ओके अब्दुल रजाक हमारे साथ हैं भाईजान, खुश आमदीद कहा जाता है आपको भी. वासा भाई हमारे साथ कहते हैं अदी से जवाब पूरी कायनात लाए पैगाम आए. ओके और जी आप हमारे साथ हैं. इमरान अली बिरोही भाई कहते हैं डियर सिस्टर आपका शो सुनने बगैर हमें सुकून ही नहीं आता. चलें जी हमारे साथ. व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम बहुत बेहतरीन आप इस्तेमाल करते रहिए. और हैं जी कश्यप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून. मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं कश्यप. और कश्यप कहते हैं नोहा तो लगाइए. अच्छा नोहा जो है ना, ये जो मातम वाले नोहा है, ये हमारे जो है ना वो स्टेशन पर चलना स्टार्ट होंगे 6 मुहर्रम के बाद. ठीक है, पहले जो है हम लाइट से कसीदा लगाएंगे. तो अगर आप कोई कसीदा सुनना चाह कर सकते हैं, आपकी फरमाइश हम लगाएंगे. लेकिन नोहा के लिए मैं सिर्फ माजरत करती हूँ.

ओबीटी से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज पितावन से। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि मार्केट में आपको इजीली मिल रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि फुल नेचुरल अजा से तैयार शुदा है और आप लोगों के ऑल स्किन टाइप के लिए है। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को बेशक बहुत से प्रोडक्ट नजर आते हैं, बहुत से प्रोडक्ट आप परचेज भी करते हैं शायद, लेकिन आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि जो क्रीमें आप लोगों को जल्दबाजी में जो है वो गोरा कर देती हैं, या फिर अगर आप आजकल फार्मूला के चक्कर में पड़ चुके हैं तो इन चीजों से जरा गुरेज कीजिए। क्योंकि जितना आप अपनी स्किन को लाइट फार्मूले देते हैं, लाइट प्रोडक्ट देते हैं, तो उतना ही आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत और ग्लोइंग रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत रहे, ग्लोइंग रहे, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानेब आ जाना है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि फुल नेचुरल अजा से तैयार शुदा है, अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। एवोकाडो इसके अंदर मौजूद है, एलोवेरा है, मिल्क है, और इसके अलावा अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फुल विटामिन सी से तैयार किया गया है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे। उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपको इजीली जो है ना वो हर जगह से मिल रही है। 5 डेज का जो है जनाब वो फार्मूला है, अगर आप 5 रातें इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और साथ साथ इसके अंदर भी एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क मौजूद है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है और फेयर हो जाती है।

ओके जी, सो हमारे साथ ही बढ़िया, ये शायद कुछ ही लोग बात जानते हैं मानते हैं, बाकी तो लोगों को नहीं लगता ऐसा। बहुत शुक्रिया जी, आप ऐसा समझते हैं, थैंक यू सो मच। दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक चंदा सब इंसानों के लिए। ओके मोहम्मद सलमान कहते हैं बुआ ओनली आपको सुनने आते हैं, थैंक यू जी, आपकी मोहब्बतें हैं और भी कोई बात नहीं। तो जुमा है वैसे भी, चले कश्यप ठीक है, फिर आपको मैं अपनी पसंद का कसीदा सुनाती हूँ। और सासा जो है पूरी पूरी 3 बजे तक, क्योंकि पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ है जनाब प्रोग्राम में, और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा है, यहाँ पर प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी आप लोगों के पास ही आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

पाकिस्तान जो कोशिशूं कामयाब, अमरीका ईरान तय थियल मफामती यादाश्त नामे ते सहयूं करे छड्यूं। मफामती यादाश्त नामे ते हतमी सहयूं सुभाणे स्विट्जरलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ॿिया सारे मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर पशकान मफामती यादाश्त नामे ते सहयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल खां महरूम रखणु मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मंझंद असासनि ताईं बि रसाई हासिल करे सघे थो। सफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत ख़त्म आहे।

तारीख़ हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेर थी नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाद चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण न आहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे उन खे दंदनि सां खुरण जी ज़रूरत न आहे हूंदी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाखाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआहिदे जी भञकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सद लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो।

सदाई बजट में आवाम के रिलीफ देने की कोशिश कई है। मुल्क दिफा एके खातर सूबन वफाक के पैसा देने जो फैसलो कयो। सदाई एफबीआर हदफ हासिल ना करे सकंदो। एसबीआर जी सूरत हाल बेहतर है। लगे तो हलंदड़ साल एफबीआर हदफ हासिल करे। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो तो बजट में 300 अरब रुपये की लगभग खसारो है। सिंध के वफाक का 2230 अरब मिलंदा। सूबई हदफ 456 अरब रखो पो है। वफाक सूबन तय किया है हर कम आइन मुताबिक कंदासीं। मुश्किल वक्त में सूबन मुल्क के खातर वफाक के सपोर्ट कर वफाक के ग्रांट पैसा पूरा मिलने ही दींदासीं।

सेंधा कोर्ट में वकील तौर पेश थियल कस्टम के वकील मेयर मुर्तज़ा वाब के एतराज़ वारे छो एक केस की बुधणी दौरान कस्टम के वकील कानून मूजिब मेयर वकील की हैसियत में केस बयान ला पेश नो सके। जस्टिस नसार बमरो चो तो जै कानून जो हवालो दिनो वे तो उन कानून से अमल क्यों तो अध वकील घर हलया वेंदा। जस्टिस सलीम जैसर रिमार्क्स डा तो केतरा ही वकील सरकारी नौकरी जाती कारोबार बिन अहदन से मौजूद आन। मुर्तज़ा वाब दलील डींदे तो मेयर तौर सिंध हुकूमत का पगार न वठन्द आए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मूजिब चूंडियल नुमाइंदो वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस करे सके तो।

मेरापुर में मुबैना तौर से जहरीलो खाधो खाने सबब एक ही घर जा टे भाती फोत पणन की हालत योगी जहरीलो खाधो खाने सबब बिन वरन की निहा नौजवान इरशाद एहतशाम फोत थे इरफान मलिक हनान साइमा उस्मान समेत बया गणती योगी हालत में अस्पताल दाखिल पुलिस के अवैध शुरूआती जांच मूजिब नाश्ते में का जहरीली शे खाने सबब घर भाती फोत ए बेहोश थे जांच क्यों क्या इन वक्त कुछ न तो चई सके मीरपुर बठोर में आबादगरण हारन जो गंजभर कैनाल समेत मुख्तलिफ शाखन ए वाहन में पानी कोट खिलाफ एहतजाज आबादगरण लगातार पानी कोट खिलाफ एहतजाज कर मुजाहिरन पानी न मिलने सबब सारन जो बेजारों ए बया फसल सड़ी रहा है पानी दई फसल बचाया वनन।

0: फैज़गंज भरिसां बिजली जो थंबो किरण सबबि बारड़ी फोर्थ गोठ जानमंद में ट्रक जी बिजली तारनि में फासण सबबि थंबो घर मथां किरी पियो। हादसे सबबि निगरी अनम शीनू फोर्थ ऐं मेघ ज़ख़्मी थी पई। हादसे बाद ड्राइवर वाक़िए वारे हंधां फरार थी वियो। पुलिस जी जांच जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, और जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। उसी के साथ साथ

जी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अभी भी आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है तो उसकी जानिब आ जाते हैं। आप लोगों को जो है ना इसका जवाब देना है मुझे, और सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का जो पैगाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए या फिर सारी इंसानियत के लिए है।

स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप परचेज कीजिएगा और दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलते जाए। ओके जनाब, तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मजीद एक और जो है ना टाइम एड करना चाहते हैं, शाम के टाइम या फिर किसी भी टाइम 4-5 मरतबा लगाना चाहते हैं तो 4 मरतबा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा जो है ना या 6 मरतबा, इतनी ज्यादा अगर आप टाइम लगाते हैं। कोई भी अगर आप सोप लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो उसकी जो असल ऐसा होता है ना कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो सिर्फ 2 से 4 मरतबा जो ना आप लगाया करें, ये ज्यादा जरूरी होता है। बाकी बार बार जो लोग फेस वॉश करे होते हैं, पानी से फेस वॉश करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप सोप या फिर फेस वॉश का बार बार यूज करते हैं तो आप लोगों की स्किन पर जो है ना वो नेचुरल ऑयल जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगी, आपके चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी लोगों की आदत होती है जो कि भाई दिन में 50 मरतबा फेस वॉश करते हैं, 50 मरतबा ही साबुन का यूज करते हैं, तो उनकी स्किन जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो रूखी सूखी सी लगती है और उनके चेहरे पर रिंकल्स भी काफी जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन की जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आप जो है ना लिमिट के अंदर अपना फेस वॉश किया करें। फेस वॉश यानी कि पानी से आप बार बार करें, ये अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 3 से 4 मरतबा जो ना ये ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तब थोड़ा मसला बन जाएगा। तो फिर आप जो है ना जब इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, इन चीजों को आप जो है ना फोकस करते हैं, इन चीजों के ऊपर आप अमल करते हैं, तब आप लोगों की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक चीज का एक जो ना वो मिकदार होता है, अगर एक चीज को आप मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मिकदार के अंदर खाते हैं, जैसे आप खाने के हिसाब से ही ले लें, तो अगर आप खाना खाते हैं मिकदार के हिसाब से तो ठीक होता है, जब वो ओवरडोज हो जाता है तब आपकी बॉडी के लिए नुकसान होता है। तो बिल्कुल वैसे ये प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है, अगर आप मिकदार के अंदर चीजें ऐड करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, अगर मिकदार से ज्यादा यूज हो जाता है तब थोड़ा आपके लिए टेंशन का बायस बन सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए तो आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप जो चीजें अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं क्या वो बैलेंस के साथ चल रही हैं या फिर ओवरडोज हो रहा है, कि आपको ये लग रहा है कि अगर हमने जितने सारे प्रोडक्ट्स से लगा ले स्किन के ऊपर तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप लाइट वेटेड फार्मूले वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें और थोड़े बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि आप लोगों की खूबसूरती को निखारते रहें, आप लोगों के चेहरे की जो खूबसूरती है उसे बरकरार रख सके। आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा है अच्छी, तो आप उसका ख्याल रखें, आप लोगों के बस की बात होती है। तो जल्दी से अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजीली आपको कहीं भी मिल रही है, आप जाइए परचेज कीजिए और जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और साथ से डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595, जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मोरो के हो तो आवाज भी मोरो की है, सुनते रहो जीए FM 88।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हाँ अवाजे पांचे शहर मोरू में छाती की तकलीफ, दम या साह छाती की बीमारियों जो माहिर।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

अमरीकी ऐं ईरानी सदर जे सहन बाद वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बि अमरीका ऐं ईरान में तय थियल मफ़ामती यादाशनामे शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आला सतह मुआहिदे ते सहियूं थियण ते साबित आहे त दुनियूं तकरार जो सफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती यादाश्त फौरी तौर ते लागू हूंदी। ईरान अबन हुरमस खे खोलींदो ऐं अमरीका तेहरान जी बहिरी नाकाबंदी ख़त्म कंदो। पाकिस्तान शरीक सालिस्ट कतर जी हिमायत सां सुभाणे तय थियल तकरीब जी मेज़बानी कंदो। सदर ट्रम्प खे तकरार जो पुरमन हल करण ते मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते सदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब ऐं तुर्किया ब मिस्र जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल सिदासम मुनीर जी महिनत किरदार सबबि इलाइक़े में इस्तक़ाम आयो। खेसि भेटा पेश कयां थो।

पाकिस्तान जो कोशिशूं कामयाब, अमरीका ईरान तय थियल मफ़ामती यादाशनामे ते सयूं करे छॾियूं। मफ़ामती यादाशनामे ते हतमी सयूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ॿिया सारस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर बशान मफ़ामती यादाशनामे ते सयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल खां महरूम रखणु मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मुसबत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मंझंद असासनि ताईं बि रसाई हासिल करे सघूं था। सफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी आहे। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कारीबाद चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो, ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआहिदे जी भञकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंगबंदी, हिकु ॿिए जी ख़ुदमुख़्तियारी जो एतराम, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जो ख़ात्मो, आबना हुरमज़ जी मुकमल तौर ते बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रूपियनि जो मनसूबो शामिल। मफ़ामती यादाशनामे मूजिबि ईरान तां अमरीका हतमी मुआहिदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो हतमी मुआहिदे ताईं। ईरान जो एटमी प्रोग्राम मंझंदि रहंदो। वतन में अमरीका पारां ईरान जा मंझंदि कयल आसासा बहाल करण वारो उहिद बि शामिल। मुआहिदे जी निगरानी लाइ मेकेनिज़म जुड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा नुक़्ता बि शामिल। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल दुरीन खे मुआहिदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआहिदो थियण जी आजियां कंदे चयो त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खिते समेत समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरतहाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा।

सदाईं बजट में आवाम के रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे। मुल्की दिफ़ा ऐं के ख़ातिर सूबन वफ़ाक़ खे पैसा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हदफ़ हासिल कयो एस आर बी जी सूरतहाल बहितर आहे। लॻे थो हलंदड़ साल एफ बी आर हदफ़ हासिल करे वेंदो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त बजट में 300 अरब रुपियनि जी लॻभॻि ख़सारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2230 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो आहे। वफ़ाक ऐं सूबनि तय कयो आहे त हर कम आइन मुताबिक़ कंदासीं। मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क जी ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक खे ग्रांट पैसा पूरा मिलण ते ई ॾींदासीं।

सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बल्दिया साने केस जो लिखित में फैसलो जारी कर छो दहशतगर्द अदालत ए सिंध हाई कोर्ट जो फैसलो कालदम करार फैसले मूजिब जवाबदार जुबेर चरिया ए रहमान भोला के शक जो फायदो डींदे बरी कया वे तो जवाबदार बेन केसन में घुर्बल नाहन त खेन आजाद कया वे।

0: मटियारी के हो तो अब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती

0: जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।

راز جو ہے اس کا راز ہے یہ, خلقتوں میں رب کا ناز ہے یہ.

0: 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

सजाया हुआ नूरी दरबार है, मेरे आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है, अली का मलंग हूँ।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ वी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज जे 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: वाला।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: 600 अरब डॉलर की फंडिंग ताई रसाई हासिल थी सके थी। ईरान जा मुंजमे दसासन ताई भी रसाई हासिल करे सके तो। सिफारती अमल लाए 70 दिन की मुद्दत हतमी ना है। असा गालियन में फौजी कार्रवाई का वधिक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी हथ सा खुली थी। ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी मुआहदे की भदकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्जो जारी रखियो त जरूरी कदम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मकसदन लाए आहे। खत्म न थींदो नई रचायल यूरेनियम के बे मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरन माजन ते जंगबंदी। एक बे की खुदमुख्तियारी जो एतराम। अमरीकी पहरी नाकाबंदी जो खात्मो। अबना हरमुज के मुकम्मल तौर बहाली। ईरान अमरीका में तय थियल 14 नुक्ता सामू अची व्या। ईरान के नए सिर तामीर लाए 300 अरब रूपये जो मनसूबो भी शामिल। मफामती यादाश्तनामे मूजिब ईरान ता अमरीका हतमी मुआहदे बाद समूरी पाबंदी हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाईंदो। हतमी मुआहदे ताई ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमि रहंदो। मतन में अमरीका पारा ईरान जा मुंजमद कयल असासा बहाल करण वारो अहद भी शामिल। माहिदे की निगरानी लाए मैकेनिज्म जोड़ ए सलामती काउंसिल की मंजूरी वारा नुक्ता भी शामिल। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल दुरियन के माहिदे ताई पहुंचाने में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली जरदारी अमरीका ईरान में शुरूआती माहिदो थियण की आजिया कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खत्ते समेत समूरी दुनिया के मुतासिर कयो। उम्मीद आहे बीहर अहिड़ी सूरत पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसलन के हल ते ध्यान डींदा।

वफ़ाक़ी पैसा वरतो न पर आईनी ज़िम्मेवारी आहे। वफ़ाक़ी टिन सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं ऐं एफ सी जे फार्मूले में तब्दीली बि ग़ौर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वॾे वज़ीर मुआज़ अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि खां क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आईनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रूपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था। निजी शोबे आहियूं। वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर नाहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि। चइनि मां मूंखे ख़तरो नाहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे। ख़बर पवण ते कार्रवाइयूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठेकेदार जी न हली आहे।

सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 103 सिफारिशन जी मंजूरी दई छी वजीर आजम के स्पोर्ट्स एरिनाज ट्रेनिंग सेंटर्स मनसूबे के पीएसडीपी में शामिल न करण की सिफारिश पाकिदान व्यापार आरो कानून दंडकू खत्म करण तफ्तान बार्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण की सिफारिश तरक्याती मनसूबन टैक्स सुधारन औरतन की फलाह माहौलियाती तहफ़ुज़ बाबत कदम खण ते जोर भरियो कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन के भी महफूज इलाकन में गुजारण की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बल्दिया शाने केस जो लिखित में फैसलो जारी कर छो दहशतगर्दी टोड़ अदालत सिंध हाई कोर्ट जो फैसलो करदम करार फैसले मूजिब जवाबदार जुबैर चरिया रहमान भोला के शक जो फायदो डींदे बरी कयो वञे तो जवाबदार बिन केसन में घुर्बल नाहिन त खेन आजाद कयो वञे।

0: सिंध में पानी जो बहरान बरकरार, पोखियल फसल सड़न लगा, मुख्तलिफ शहरन में आबादगारन जा मुजाहिरा धरना, वारत हल्के में ज़री पानी की खोट बदमनी खिलाफ समय मानून की रैली, नटण उस में धरणो, पानी कोट खत्म करने जो मुतालबो, मीरपुर वटोरो में आबादगारन हारियन जो गंज बहर कैनाल समेत मुख्तलिफ शाखन वाहन में पानी कोट खिलाफ एहतजाज, जरवार ए बरपासे में पानी कोट खिलाफ जस्कम जो पैदल मार्च, इलाके में पानी कोट खत्म करने जो मुतालबो, सन में मांझद तालिके में पानी कोट खिलाफ भी हारियन एहतजाज कयो। मेरापुर में बेना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब एक ही घर जहां टे भाती फोत, पंज जन की हालत गणती जोगी, जहरीलो खाधो खाने सबब बिन वरियन की नेहा मलिक नौजवान इशाद एहतशाम फोत थिया, इरफान मलिक हनान साइमा उस्मान समेत बया गणती जोगी हालत में अस्पताल दाखिल, पुलिस है शुरुआती जांच मूजिब नाश्ते में का जहरीली शे खाण सबब घर भाती फोत बेहोश थे, जांच जारी है, इन वक्त कुछ चई न तो सकजे। किपरो वेझो नाफरमान पुटन निंड सुतल पीरसन पी के कुआड़ियों जा वार करे कतल करे छो, गोटला रखियो बोजदार में जहूर आए अनवर बख्श बोजदार पीरसन वालिद अहमद बख्श के कतल कयो, पुलिस मूजिब बई पायर पी के कतल करण बाद फरार थी विया हैं, कुल जी वेझो भी हथियारबंदन हथा होटल ते वेठल गोठाणो कतल, पाठ शरीफ में होटल बहरा बेंच ते वेठल नौजवान उस्मान उर्फ डाडो चांडो के हथियार बंद कतल कर बाद फरार थी गया, दादू जे मसण रोड ता नौजवान सदाब मल्ला जो लाश हथ, इलाके वासियन मूजिब नौजवान जो मंगणो थियल हो, मंगणे टुटण ते नौजवान आबकार कयो आहे, पुलिस चयो आहे त वाकिए जी जांच जारी आहे। दिरिया रोड के इलाके लाखा रोड भरसा पसंद पड़ने तां लाखा बिरादरी ए मीरजत दुर में चिकटाण वधी वई, पसंद पड़ो कंदड़ नौजवान के वारिसन जो लाखा दुर ते गोठ वता हमलो करे पुल लूट करण जो इल्जाम, गोठ मोहम्मद मुराद मीरजत वासी गोठाणन जो हमले खिलाफ एहतजाज, गोठाणन मूजिब तहफ़ुज़ फराहम करे इंसाफ कयो वञे। कंदकोट में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अली अली अली अली।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हल कढ़ण ते मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कया थो। ईरानी क़यादत खे बि पुरमन लाइ कदम खण ते कतर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में इस्तेहकाम आयो। खेस भेटा पेश कया थो। पाकिस्तान जूं कोशिशूं कामयाब। अमरीका ऐं ईरान तय थियल मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं करे छॾियूं। मुफ़ामती यादाश्त नामे ते हतमी सहियूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ॿिया सालिस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रम्प ऐं ईरानी सदर पसिक्यान मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं कयूं। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिसाइल सां महरूम रखण मुनासिब आहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे $300 अरब जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मुंजमिद असासन ताईं रसाई बि हासिल करे सघे थो। सिफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी नाहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जीबी खे कौमी असेंबली ऐं सेनेट जी नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरनि खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडनि में हिसो वठण जो बि ऐलान। कौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर खे बि नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। मुहाजिरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझ थी रहियो आहे हुन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए थो। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ़ चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे थी उन खे डंदनि सां खोलण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआदे जी भेजकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। इसराइल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग बंदी। हिकु ॿिए जी ख़ुदमुख़्तारी जो एहतराम। अमरीकी पहिरीं नाकाबंदी जो ख़ात्मो। अबना हरमुज़ जी मुकमल तौर बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रूपियनि जो मनसूबो बि शामिल। मफ़ामती यादाश्त नामे मूजिब ईरान तां अमरीका हतमी मुआदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो। हतमी मुआदे ताईं ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमिद रहंदो। मतन में अमरीका पारां ईरान जा मुंजमिद कयल असासा बहाल करण वारो अहद बि शामिल। मुआदे जी निगरानी लाइ मैकेनिज़्म जोड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा रुख़्ता बि शामिल। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल धूरियन खे मुआदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआदो थियण जी आजियां कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल पूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरतयाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा। पैसा भतो न पर आइनी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ खे 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। एनएफसी जे फार्मूला में तब्दीली बि हो रेठ आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रूपियनि जे लॻभॻि ख़सारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर न आहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि। चइनि मां मूंखे ख़तरो न आहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे। ख़बर पवण ते कार्रवाइयूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड

सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 123 सिफारिशुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर-ए-आज़म जे स्पोर्ट एरिनाज ऐं टेनिक सेंटर्स मंसूबे खे PSDP में शामिल न करण जी सिफ़ारिश। पाक ईरान वापार आॾो कानूनी रंडकूं ख़तम करण ऐं तफ़्तान बार्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण जी सिफ़ारिश। तरक़ियाती मनसूबनि, टैक्स सुधारनि, औरतुनि जी फलाह ऐं माहौलियाती तहफ़ुज़ बाबति क़दम खण ते ज़ोर भरियो। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन खे बि महफ़ूज़ इलाइक़नि मां गुज़रण जी सिफ़ारिश।

0: कंदकोट में 44 का वधिक डुहारी हथियार पिटा करे पुलिस आरो पेश। डुहारी वकील अली हसन शेख, फैज मोहम्मद सुंदरानी, जीवन मलिक ए सईदू गोलू भी शामिल। पुलिस मूजिब डुहारी फकीर अली हसन शेख मथा 50 लख इनाम रखियल हो। डुहारियन मथा अफवाह पुर धाड़न ए मुकाबलन जा केस दाखिल हुआ। डुहारियन के जेल मोकलो वियो। कराची में गिरफ्तार थियल मनशात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में अहम अखबर आई। पुलिस वधिक बिन राइडर्स के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस जो चवण आए गिरफ्तार राइडर्स पिंकी गैंग लाय कम कदा हुआ। बिन्हीं के कोट पेसन वाले इलाके में गिरफ्तार किया हुआ। किपरो जी मॉडल कोर्ट चोटियारू में तशद्दुद जो निशानो बणियल शायद बानो मल्ला जी मुबैना हुआ। तशद्दुद ए ज्यादती बारे केस जो फैसलो बुधाए छो। केस में नामजद जवाबदार वजीर राजर दो साबित न थियण से भरी। मुतासिर नारी शाद पानो मल्ला ए संदस माओ पारा बयान तब्दील करण बाद जवाबदार की अदालत वरी कयो। जरियन मूजिब मशहूर केस जो एक महीनो अग राजूणे डिटके जरिये फैसलो थे हो, जै बाद नारी ए संदस माओ कोर्ट में बयान तब्दील कर हो। मीरिया रोड के इलाके लाखा रोड भरसा पसंद के पड़ने ता लाखा बिरादरी ए मीरजत दुर में चिकताण वधी वही। पसंद पड़ो कदड़ नौजवान के वारिसन जो लाखा दुर ते गोठ मथा हमलो करे फुल रुख करण जो इल्जाम। गोठ मोहम्मद मुराद मीरजत वासी गोठण जो हमले खिलाफ एहतजाज। गोठाणन मूजिब तहफुज फराम कर इंसाफ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: वधीक नुकसान थियण न ॾींदासीं। मुआजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते भरे सघजनि। घणो थियो एक्शन करे ऐं चूंडनि तरफ़ जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में रस्ता हुआ। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाई दान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत, और वो भी बेहतर कीमत, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती लुक।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.1 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हरी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: साईं अली जा मलंग
1: खालिक जी हर रज़ा जो आ मालिक अली वली
0: खालिक जी हर रज़ा जो आ मालिक अली वली
1: खालिक जी हर रज़ा

0: अली जा मलंग
1: दुनिया मजो अली जो आ हुबदार थी हलियो
0: दुनिया मजो अली जो आ हुबदार थी हलियो
1: दुनिया मजो अली जो आ

0: जन्नत जा घर पया था हूँ विकड़न गली गली,
1: जन्नत जा घर पया था हूँ विकड़न गली गली,
0: जन्नत जा घर पया था हूँ।

0: सघे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग गालियों जो मकसद झुकण ना हों जेका गंड हथ से खुली सके थी उन्हीं के डंडन से खोरण की जरूरत ना हूंदी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी मुआहरे की भजकड़ी है। इसराइल लबनान से कब्जो जारी रखो तो जरूरी कदम कया वा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मकसद लाए है खत्म नींद नई रचायल यूरेनियम कें बे मुल्क मुंतकिल। लबनान समेत समूह
1: अब आप सुनेंगे
2: मटियारी के हो तो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: साईं अली जा मलंग
1: खालिक जी हर रज़ा जो आ मालिक अली वली
0: खालिक जी हर रज़ा जो आ मालिक अली वली
1: खालिक जी हर रज़ा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 90 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर,
2: सिंध की आवाज

मुझको छोटा न समझ, मुझको छोटा न समझ, बात यही कहता हूँ। मैं भी अकबर की तरह अज़्म में जवां रखता हूँ, लाखों

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: मेरी शान भी तू।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
1: The world told him to choose power or elegance. He chose both extremely. Every muscle sculpted, every movement deliberate. His presence arrives before him. He is a force, he is an art. Engineered to perform, designed to be seen. Extremely perfect in both the style and the substance. Gree, built for the extreme.
2: सच जो आवाज उधर
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

बुद्धो चरी तू सिर्फ बुद्धो चरी तू सिर्फ मुंजी आई खबरदार जे के छोकरे के डिठई तोदा करी चंदो में।

0: मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान जी कोशिशन रंग लातो, अमरीका ईरान ते थियल मफामती यादाश्त नामे ते सहियूं करे छॾियूं। वजह ते सही कई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रांस ऐं ईरानी सदर मसूद पेसिक्यान तेहरान में मफामती यादाश्त नामे ते इलेक्ट्रॉनिक सहियूं कयूं। अमरीकी ऐं ईरानी सदर खां पोइ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सालिस जी हैसियत में मफामती यादाश्त ते सही करे छॾी। वज़ीर-ए-आज़म सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान आपना हुर्मुस खे खोलींदो ऐं अमरीका बहिरी नाकाबंदी ख़त्म कंदो। तकरार जो पुरमन हल कढण ते सदर ट्रम्प खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते कदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि सहारा जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में इस्तेहकाम आयो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल धुरियन खे मुआदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआदो थियण जी आजियां कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार ख़ते समेत समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरताल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान के कौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो।

0: बच्चे को जरूरत पड़े और आप देख रहे हैं कि वो जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूं, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दूं, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रहे।
1: फंड्स ॾींदासीं ऐं एनएफसी जे फार्मूला में तब्दीली बि उहो रेट आहे, पर फैसलो इस्तीफ़ा के राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो, वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना, बजट में 300 अरब रूपियनि जे लॻभॻि असारो आहे, सिंध खे वफ़ाक़ खां 2263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।

0: जे वतन तहत निजी कंपनियूं प्राइवेट माण्हुनि खां मिल्कियतूं हासिल करे सघंदियूं। शहरी निजी कंपनी खे पसंदि ईंदड़ मिल्कियत विकिरो करण जा पाबंद हूंदा। पब्लिक पार्क ते बि निजी कंपनी खे हक़ हासिल थी वेंदा। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, लतीफ कोसो, शांताना गुलज़ार ऐं ॿियनि केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अहिड़ो बिल त शहरीयत जे बि ख़िलाफ़ हूंदो। कंहिंजी बि मिल्कियत मर्ज़ी बिना मुआवज़े वठी नथी सघजे। हुकूमत जो अहिड़ो बिल कब्ज़े खे हथी ॾींदो। कब्ज़ा माफ़िया हलण न ॾींदासीं। हुकूमत तकरारी बिल पास कराए न सघंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।